फूल मुरझा गए, चांदनी ढल गई, अपना अंजाम भी कह गई हर कली। फूल मुरझा गए, चांदनी ढल गई, अपना अंजाम भी कह गई हर कली। बेनिशां बेनिशां हो गए हर निशां,

कि हम सताए खड़े हुए हैं, सलाम ले लो। मेरी दुआ है अल्लाह तबारक व तआला विल्स देन आई कैन प्रेजेंट दिस नात शरीफ वंस अगेन, दरोज़ा मुबारक ऑफ नबी अलैहिस्सलाम।